0: systems are offline.
1: Number one for today's hits and all-time favorites. 102.7.
2: It's East FM.
3: कैनेडा सरकार जमानत अते सजा दे कानूनां विच सख्ती ल्या रही है। हिंसक अते बार बार अपराध करन वालियां नूं भाईचारे तों दूर रखण लई सिस्टम विच सुधार तां जो तुसीं घर विच सुरक्षित रहो। canada.ca/surakhit-canada ते होर जानो। कैनेडा सरकार वल्लों इक सुनेहा।
1: This is East FM.